जागो, अरे जागो, अरे जागो सोने वाले वरवधु, इतनी जल्दी निद्रा में तल्लीन हो गए। जागे।

हम। अरे अरे अरे ये क्या हो गया, हम कहां से कहां आ गए। शास्त्रीय संगीत गवैये अनूप शंकर की धोती लपेट कर कव्वाल मरम्मत खां ब्रदर्स का चूड़ीदार पजामा कैसे पहन लिया। अल्लाह प्रलय प्रलय। अरे शंख बजाओ।

तू तुम्हारा बच्चा प्यारा प्यारा अच्छा अच्छा तुमने कहा मेरी जान फसाई हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी अरे अरे कोई दीपक लाओ बत्ती लाओ माचिस की डिबिया लाओ।